हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं पंजाबी और हिंदी शो 107.7 ट्रिपल वाई पर। ये एक हिंदी और पंजाबी शो है।

0: आप सब ने ट्यून इन किया है 107.7 आपका अपना स्टेशन और अपना म्यूजिक.
1: Your town, your sound, your triple Y.